0: North Asia's number one radio station, it's hot.
1: प्यार की रोमांटिक लेकिन झूठी कहानियां कभी बनाई है अपनी जिंदगी में झूठी कहानियां प्यार की. सो मैं एक्स एंड आई वी मेट ऑन अ डेटिंग ऐप, मतलब इट वाज एज सिंपल एज दैट. लेकिन लोगों के लिए ही टोल्ड मी कि हम उन्हें ये कहेंगे कि तेरे पास एक किताब थी और तू एक कैफे में थी और मैं भी उसी कैफे में आया एंड आई वॉज ऑल्सो रीडिंग द सेम बुक एंड दैट्स हाउ वी गॉट टॉकिंग कि ओ माई गॉड किसने सोचा था कि आप भी उम्बर्टो इको पढ़ते होंगे. एंड आई वॉज लाइक हम ये सब ड्रामा कर किस लिए रहे हैं. ही वॉज लाइक एक्साइटमेंट मेरी जान, हम एक आइकॉनिक कपल बन के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे टू दिस वर्ल्ड एट लार्ज. आई वाज लाइक डज द वर्ल्ड इवन केयर अबाउट इट. बट इट टर्न्स आउट दैट जिसको भी हमने ये प्यार की झूठी स्टोरी सुनाई थी, दे एंडेड अप लविंग एवरी बिट ऑफ इट. क्या आपने कभी अपनी लव लाइफ को, वो जितनी एक्साइटिंग थी उससे बढ़ चढ़ कर लोगों को बताया ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज? वट एवर योर आंसर टू दैट वन इज, आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल पर
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
4: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: रेडियो
5: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: देखिए हम ऑलरेडी बहुत ही नर्वस हैं, हम अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और हम एक बहुत ही फैंसी कॉफी शॉप पर जा रहे हैं, लेकिन एक से दूसरी कॉफी का डिफरेंस नहीं पता है। जरा मदद करके बता दीजिए प्लीज।
1: रोशी के डीएम से।
0: This has to be the sweetest DM anyone has ever sent me. Mohit, I am totally going to help you figure out your coffee game. अगर आप पहली बार एक बहुत ही फैंसी कॉफी शॉप पर अपनी बेब को लेकर जा रहे हो एंड यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज रियली इग्नोरेंट ऑफ कॉफीज, लेट मी जस्ट टेल यू मोटा मोटा। कैपेचिनो वो कॉफी होती है जिसमें स्टीम मिल्क होता है और थोड़ा सा ब्लैक कॉफी होता है, ठीक है? तो ज्यादा इसमें दूध होगा और एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो होगा। एस्प्रेसो है एक शॉट काली कॉफी। लाते जो है उसमें एस्प्रेसो है, लेकिन उसमें जो दूध की मात्रा है वो ज्यादा है। यूजुअली आइस लाते टेस्ट्स अ लॉट लाइक कोल्ड कॉफी, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही। अगर आप मोका ऑर्डर कर रहे हैं तो मोका का मतलब है कि इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी होगा। तो कॉफी है, दूध है और चॉकलेट का फ्लेवर है। अमेरिकानो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब है एस्प्रेसो का एक डार्क कॉफी का शॉट है और उसके ऊपर बहुत सारा गर्मा गर्म पानी है। और अगर आप आयरिश कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें विस्की भी होगी। सो इफ यू आर समवन हू इज अ टीटोटलर, आप आयरिश कॉफी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अगर आप फ्लैट वाइट ऑर्डर कर रहे हैं तो ये है, इसमें कॉफी है और कैपेचिनो के बनस्पत इसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें स्टीम मिल्क भी होता है और इसमें थोड़ा सा फोम भी होता है। तो आपके लिए बस इतना कॉफी का जानना इनफ है। आपकी स्माइल इतनी चार्मिंग लग रही थी मोहित, मैंने आपके डीपी में देखा है दैट वो लड़की कॉफी पे कम और आपकी स्माइल पर ज्यादा ध्यान देगी एंड आई विल नॉट ब्लेम हर फॉर इट। और अगर मोहित की तरह आपकी भी जिंदगी में यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट एंड यू आर सुपर नर्वस अबाउट इट, जस्ट हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। आई बी सो हैप्पी टू हेल्प यू फिगर योर वे अराउंड योर डेटिंग सीन। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, हिट मी अप, डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with G. R-O-C-H-I-E.
1: Roshi, Roshi.
0: Mirchi Roshi.
2: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
3: आज का वर्ड ऑफ द डे है बनस्पत, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है एज अपोज टू। अब इसे एक एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमेजिंग सज्जन किस्म का इंसान है, बनस्पत आपके बॉयफ्रेंड के, जो आपको सिर्फ एक बैंक और काम वाली बाई समझता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इस सेंटेंस का ये है, इट इज टाइम दैट यू डम्प्ड योर बॉयफ्रेंड हनी, इफ ही इज ट्रीटिंग यू लाइक अ बैंक देन मेबी इट्स टाइम यू डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। ऑन दैट नोट, अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही इसके विपरीत है एंड यू एक्चुअली मेट समवन हु इज रियली इनक्रेडिबल, आपने कभी सोचा भी नहीं था आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी डिटर्जेंट पाउडर की तरह, हिट मी अप एंड टेल मी योर लाइफ स्टोरी। मॉर्निंग ग्लोरी, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: fiesta la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Hello, भाई, wrong number से बात कर रहा है, wrong number से.
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है, कौन?
2: ओ, मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ, महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
1: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया।
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है।
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchie. R-O-C-H-I-E.
1: Roshi, Roshi.
2: Mitchie Roshi.
3: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: गौर से देखो कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज रिपीट हो रही है एज अ पैटर्न, क्योंकि अगर वो रिपीट हो रही है इट मींस यू हैवंट लर्नड द लेसन येट, विच इज काइंड ऑफ द रीजन व्हाई आई एंड अप इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. मैं अभी तक सीखी नहीं हूं कि रेड फ्लैग से दूर रहना है, ग्रीन फ्लैग्स को गले लगाना है. अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही रेड फ्लैग वर्सेज ग्रीन फ्लैग सिचुएशन है, हिट मी अप एंड वील गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी धैर्य है. हाय धैर्य.
5: नंबर मिला था बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका कॉल आएगा.
4: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में आजकल धैर्य?
5: मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता. आई एम एक्चुअली स्टूडेंट.
4: ये तो अच्छी चीज है.
5: पर कुछ अच्छा होने रहा है.
4: क्या नहीं हो रहा?
5: शी इज माय फ्रेंड. आई लाइक हर. शी आल्सो लाइक्स मी बट उसके घर में इशू है.
4: तो स्कूल में की कॉलेज में?
5: हम इस कॉलेज में हैं.
4: तो तुम छुप छुप के भी तो मिल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है?
5: हम छुप छुप के मिलते हैं बट उसको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम ज्यादा क्लोज हो गए तो जब बिछड़ेंगे तो ज्यादा दुख होगा ना.
4: पॉइंट तो है, तेरी गर्लफ्रेंड काफी लाइक इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल है.
5: मैम इतना इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए ना. प्यार कौन सा इंटेलिजेंस से होता है, वो दिल से होता है ना.
4: तो कोई बात बताओ वैसे धैर्य, ऑनेस्टली अगर तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से चल रहा है ना, दैट मींस तुम्हारा प्यार लाइक ईक्यू है, इमोशनल क्वोशेंट, वो थोड़ा कम है. और जो तुम्हारा आईक्यू है ना, दिमाग का क्वोशेंट, वो थोड़ा ज्यादा है. तेरी गर्लफ्रेंड प्रैक्टिकली तो सही बोल रही है कि मतलब जितने क्लोज होगे बाद में उतना ही दुख होगा. बट देखो कोई फर्क पड़ता है उससे? मुझे तो ना पड़े. अगर मैं हूँ और आई नो कि यार ठीक है मेरा रिलेशनशिप शादी में नहीं बदलेगा बट मुझे मोहब्बत है असली, तो जब तक चल रही है मैं तो चलाऊंगी यार. उसके बाद मैं देवदास बन गई तो बन गई.
5: बिल्कुल रोशी, मैं उसे यही बोल रहा हूँ कि आज तो जी.
4: हाँ एग्जैक्टली,
5: समा होगा देखा जाएगा.
4: और कल क्या पता यार, पेरेंट्स मान जाए, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं रिजोल्व हो जाए, या हो सकता है कि दो साल बाद तुम ही एक दूसरे में इंटरेस्ट ना हो. धैर्य आई फील कि तुम्हें आज प्यार हो रहा है ना, कोई गारंटी नहीं है कि एक साल बाद तुम्हें एक दूसरे से उतना ही प्यार हो जितना आज है. उसके बारे में सोच करना, बिकॉज उसने जो किया है तेरे साथ, वो जो अब कह रही है, वो मैं भी एक बंदे के साथ कर चुकी हूँ और जिंदगी भर बैठ के रिग्रेट किया मैंने. अब क्योंकि तुम कॉलेज से निकल के ऑफिस में चले जाओगे, उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे. यू बोथ नीड सपोर्टिव पार्टनर्स. अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 6-7 months लेट्स बी टुगेदर, और उस 6-7 months के बाद देखेंगे क्या करना है. थोड़ा टाइम बाय कर ले उससे अभी के लिए. जस्ट गो विद द फ्लो राइट नाउ.
5: मैं उसको गाना सुना दूं?
4: कौन से वाला?
5: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो.
4: यू आर सच अ रॉक स्टार. आई डोंट नो अबाउट दिस गर्ल बट अगर मैंने तुझसे 5 मिनट और बात की ना धैर्य, तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा. इसलिए मुझे लग रहा है कि तू इस बंदी को तो कन्विंस कर ही लेगा. एंड फॉर द फ्यूचर विद द गर्ल आई हैव दिस फॉर यू.
2: यू've बीन रोशिफाइड.
4: I love you so much.
5: Same here. I love you too, Roshi.
4: All the best to you, sweetheart.
5: Bye.
4: Okay, bye. अगर आपकी भी जिंदगी में धैर्य की तरह, आपके पास तो धैर्य है लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के पास धैर्य नहीं है, why don't you hit me up and we will talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने एक्स को राइट आफ्टर योर ब्रेकअप ब्लॉक करना इज नॉट अ बैड थिंग. हाँ, आजकल के लाइक इंटेंसली एक्टिव सोशल मीडिया के एनवायरनमेंट में वन वुड थिंक कि यार मैं इस इंसान को ब्लॉक क्यों करूँ, इतना लाइक पेटी लगता है. बट इट्स नॉट पेटी, इट इज़ सुपर हेल्दी. तो मेरा जो एक्स था, जो अभी रिसेंटली एक्स हुआ था, उसने ना डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे सारे टाइम इंस्टा पर डीएम करता रहेगा बहुत सारी लव पोएम्स, कुछ जो उसने खुद लिखी हैं, कुछ जो उसने कॉपी की थी कहीं से. बट द पॉइंट वाज, जब तक वो मेरे इंस्टा पर था, ही केप्ट सेंडिंग मी थिंग्स. और एक टाइम के बाद, मतलब मेरा दिल वाज टर्निंग इनटू अ पडल एंड आई हैड टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि ये बंदा अल्कोहलिक है, ही नीड्स हेल्प, आई कांट गो बैक टू हिम. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई मैं इसको ब्लॉक कर रही हूँ, बिकॉज इसे ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत हेल्दी डिसीजन है. एंड ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आई ब्लॉक्ड हिम, बिकॉज अगर मैं उसे नहीं ब्लॉक करती तो मैं और नए और इंटरेस्टिंग लोगों को कैसे मिलती. सो ऑन दैट नोट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने न्यूली एक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ब्लॉक करना इज नॉट पेटी, इट इज हेल्दी. लेकिन अगर आप तब भी उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हो, नोइंग फुली वेल दैट इट्स गुड फॉर यू, वाई डोंट यू हिट मी अप और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB, सो डू व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchie. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mitchie Roshi.
1: Only on Radio Mitchie, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इस तरह के फिनोमेना सिर्फ मेरी बेस्टी के साथ हो सकते हैं या फिर अब्रॉड लोगों के साथ हो सकते हैं. लेट्स जस्ट गो विद दैट वन बिकॉज मेरी बेस्टी के अलावा और मैंने किसी से ये नहीं सुना है. सो शी केम बैक यस्टरडे, उसने मुझे फ़ोन किया एंड शी सेड रोशी आई जस्ट हैड अ जिमनाजम एंड आई वाज लाइक भाई मैंने तरह तरह की चीज़ें सुनी है, ये जिमनाजम क्या होता है. शी सेड अगर आप बहुत इंटेंस कोर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी यू एंड अप बीइंग प्लेजर्ड. I was like seriously, she said हाँ. और ऐसा नहीं है कि हम जिम में कुछ लाइक यू नो अनफॉरबिडन चीज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ कोर एक्सरसाइजेस करते करते कई बार इफ़ यू आर लकी इनफ देन आप चरम सुख की सीमा प्राप्त कर सकते हैं विदाउट इवन ट्राइंग और थिंकिंग अबाउट इट. एंड आई वॉज लाइक माई गॉड दैट इज सम सीरियस इन्फॉर्मेशन. और इस चीज़ का नाम भी है, मतलब सरप्राइज सरप्राइज, इट्स कॉल्ड अ जिमनाजम. तो अगर आपको कभी जिमनाजम हुआ है आई रियली वॉन्ट टू नो योर मॉर्निंग स्टोरी. एटलीस्ट मुझे ये लगेगा कि मेरी बेस्टी एक लौता पागल इंसान नहीं है इस दुनिया में. एंड टू टेल मी योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डू व्हाट यू आर सो गुड.
3: हेलो
4: हेलो.
3: हाँ जी
4: विवेक जी.
3: हाँ जी बताइए.
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
3: या ऑफ कोर्स.
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो.
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है. लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा.
4: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन.
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे.
4: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी.
3: अरे कुछ नहीं यार.
4: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी होगी आवाजें, क्या हुआ क्या था.
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की.
4: अच्छा अच्छा.
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ.
3: हाँ अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
3: मजे आ रहे हैं.
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला.
3: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा
5: फोन करके. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आपको नींद आ गई और मिड एक्शन में आप सो गए. लेकिन इतने कूल हो, आपने अपने बॉयफ्रेंड को तो बताया नहीं इसके बारे में और उसको पता भी नहीं चला. कितना ऑब्जर्वेंट बॉयफ्रेंड है ये. The point is, if you have like a really wonky confession, मेरे पास है उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. So hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. And with me right now is my mystery caller. Hello, mystery caller.
6: Hi, Sushi.
2: How are you?
6: I'm Good.
2: What was the last really mischievous thing that you did?
6: Not mischievous. This is confession that I have to make. Okay. Huh. I went on my first date with a guy I met through a friend.
2: Okay.
6: So my friend said that he's a perfect guy for you. Like, you know, likes what you like and, you know, very chivalrous. On my date, he was really good looking. Huh. So good to talk to. Huh. Such a nice person. Wow. And then he said that I'll drop you home.
2: Huh.
6: I was like, okay, cool. Huh. So then I got into the car. Huh. He opened the door. So such a nice guy. And all of that. So I was so super impressed. I was like, "Arey, wow, ye to ladka mil gaya, shaadi shaadi." And then,
2: okay.
6: So I got into the car. Huh. I turn around and I see ki back seat pe ek teddy bear pada.
2: Okay.
6: I'm like, I asked him, "What about this teddy? Ye teddy haan kyun hai?"
2: Huh.
6: So he said that ye meri sister ne mujhe graduation pe diya tha.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस मैंने रिसेंटली सुना, विच शायद अगर मैंने पहले सुना होता या शायद मैं पहले इंटेलिजेंट इनफ होती, आई वुड हैव अंडरस्टूड बेटर, कि एनी मैन हु अवॉइड्स हिज ओन फीलिंग्स विल इग्नोर योर फीलिंग्स. अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो अपने खुद की फीलिंग्स के साथ नहीं बैठ सकता, जो खुद की फीलिंग्स से डरता है, वो आपकी फीलिंग्स कभी नहीं समझेगा. दैट्स इट, दैट्स वेयर द माइक ड्रॉप्स. आप जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर लो इसे बदलने की, द ट्रूथ इज एनी वन नॉट कम्फर्टेबल विद देयर ओन इमोशंस विल नॉट बी कम्फर्टेबल विद योर्स. अब आप ये बताओ कि मेरी तरह कितनी बार इमोशनली अनअवेलेबल इंसानों के साथ दिल लगाया है, और जब लगाया है, How hard has it been for you? And to tell me about that, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FP पर. मेरा नाम है मिर्चि रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And while you do that, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. And I love you loads.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था,
2: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे
3: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: मैं
4: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव।
1: छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में।
2: वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं।
1: दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोना रे तीसरी मंजिल का गाना है, शब्बी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आप सुन रहे

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो
1: कौन
2: हेलो विपिन
1: कौन बोल रहा है
2: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था
1: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था
2: आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो कब अप्लाई किया था आपने
1: भाई तो इतने धीरे के बोल रहा है
2: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं 15 रिजेक्ट कर चुके समझ गए इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो आप क्या फायदा है आप बताओ कब किया था
1: अभी पहले किया था
2: अच्छा अच्छा आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी आप खुद आए थे
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी
2: भैया इस तो बोल अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे कौन है मैंने कहते कोई बात नहीं आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके
1: जाना जरूरी है
2: कहाँ जा रहे हो
1: दुबई
2: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई जल्दी जाना है तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए हो सकता है कल ही मिल जाए
1: हाँ ठीक है ठीक है
2: मैंने सही किया ना बता दिया वरना ये तो बौखला जाता ना ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए भाई साहब एक बात बताऊं आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है मैं ऐसी बात करता था कैसी हो वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा हैं बराबर में आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं
1: मैं तो पागल है क्या
2: चिल्लाओ मत ठीक है मैं रखता हूँ
1: करवा देना भी है
2: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे
1: सॉरी सॉरी सॉरी
2: ठीक है चलो पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट
1: ओके ओके
2: आई लव यू
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं मुर्गा बना रहा था
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी चीज़ विद चारू ओनली

0: भाई अनुराधा पौडवाल वैसे तो 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनके करियर की शुरुआत 70s में हुई थी एंड शी रोज टू फेम इन 80s। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उन दिनों किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरह से गाने बनते थे, क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसे। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी।
0: ब्यूटीफुल, लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu.

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीनत अमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीनत अमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी बिकॉज जीनत अमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाय, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है, रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले, वेल जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुम

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन.

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट आए साथ में आए थे, मैंने उनको पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है? बोले कुछ नहीं, एक लड़की ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं, कहानी में कौन है, क्या है क्या है। बोले काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्तेदार वहाँ से लड़की का जिया बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे, तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सिलेक्ट हो गए क्या? नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा, हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना, हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा?
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
3: ऑफकोर्स
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास देते, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने नहीं है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: मिर्ची
6: मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: ये लेट 70s की बात है जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे और वीकेंड्स पे बॉम्बे जाके फिल्मों में काम भी ढूंढते थे। तब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए FTII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठते, एक है एक लड़का आता है गांव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये बोला कौन की रे जी होशी की रे? सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको, तुम किसने बोला कि होशी की? कौन बोलता कहानी? बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत। बोला बोला ना हम चिट्ठी भेजेगा, बड़े डांटते आके चले। और उस वक्त क्या था, जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी, नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे वहां से पिकअप कर लो। तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया बहादुरी। इससे पहले कि वो पहुंचे बॉम्बे, मैं पहुंच गया बॉम्बे और जाके मैंने बोला, दादा बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है। फिर उनको दया आगे होगी, फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में, वहां से शुरू।
0: और यहां से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शो

0: Priscilla.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है, इसमें एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी, उनकी हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है, मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu ये मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था,
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
3: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा है?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स with Charu only.

0: अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई,
1: मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में।
0: ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफी मुझे फर्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज़ वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है

0: Why didn't you come out, you being a film star, and why didn't you come out with the tape? The wo tape काफी popular भी होगा और and you know because you're doing it, कोई नहीं तो आपके fans जरूर खरीदेंगे. तो मैंने कहा ठीक है, it's a good idea. It's an audio tape, it's not a video tape. तो मैंने किया. By God's grace, it's a very big hit.
1: Well, इस audio cassette का नाम है Rekha's Mind and Body Temple और इसकी एक copy आपको YouTube पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस audio के साथ Rekha की exercise और yoga, fitness के कुछ photos भी हैं. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

only on Radio Mercy New York. It's hot. Purani Jeans with Charu.

1973 की फिल्म राजा रानी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये पॉपुलर गाना इज इंस्पायर्ड बाय और सैम्पल्ड फ्रॉम एक अंग्रेजी गाना जो 1969 में रिलीज हुआ था। बैंड का नाम द फिफ्थ डायमेंशन, गाने का नाम एज ऑफ एक्वेरियस। सुनिए जरा थोड़ा सा। समझ में आया आपको कौन सा गाना है ये? रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय आशा भोसले एंड भूपेंद्र, कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vedva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानक मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है. तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने एकदम सही कह रहे.
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ಸರಿ ಸಗ ಮಗ ಸಗ ಮಗ ಪದ ಪದ ನಿಧ ಗಮ ಪದ

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट मिर्ची।
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी
3: विवेक जी।
2: हाँ जी बताइए।
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं? विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास देते, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा।
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ
3: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो आपको, आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

से ना हो पाएगा। कौन बोला

0: का समय।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी के लोएस्ट फेज में खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इस वर्ल्ड कप में जो हमने जीता, फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरा सवाल आपसे जो है कि अगर ऐसे प्लेयर्स हों, क्योंकि ये लाइफ में भी सिचुएशन आता है कि आप में टैलेंट बहुत है लेकिन आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज में हो, कौन सी एक ऐसी एडवाइस है जो आप उनको देना चाहेंगे कि भाई जस्ट पुट योर हेड डाउन और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो और सब कुछ सही होगा?
4: सो दे कैन नॉट बी एनी वन टिप बिकॉज वी आर ऑल वेरी डिफरेंट। व्हाट मे वर्क फॉर यू मे नॉट वर्क फॉर मी, बट व्हाट दे सेड, आपको लगा होगा कि वो बहुत ऐसा सिंपल सा था पर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था जो उन्होंने कहा, फैमिली सपोर्ट एंड टीम सपोर्ट। सारी दुनिया क्या कह रही होती है ना, वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर आपके आसपास वाले आपके ऊपर फेथ रखते हैं तो वो आपकी इनर कॉन्वर्सेशन बन जाती है। इनर कॉन्वर्सेशन है, सारे कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, पर कोई एक है जो कहता है मुझे पता है आप कर सकते हैं, आई नो दैट यू कैन डू इट। तो आपका, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है, आपका मन कहना शुरू कर देता है कि मैं ये कर सकूंगा। इट इज दोज पीपल व्हाट दे आर सेइंग टू यू। जैसे अगर उसमें से कोई कहता है ये वक्त भी बीत जाएगा, नाउ इट कुड बी वन लाइन एंड इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन सबके लिए काम करती है। जस्ट द पेनी ड्रॉप्स आपके लिए वो अहम मोमेंट हो जाता है। किसी के लिए होगा कि ये वक्त भी बीत जाएगा, किसी के लिए होगा सोच लिया तो कर लेंगे, एक बार मन ने अगर ठान लिया तो वो चीज हो सकती है। किसी ने कहा, किसी के लिए हो सकता है नो बट माई कोच हैज कम्प्लीट फेथ इन मी, तो आई एम एबल टू शट ऑल दैट नॉइज आउटसाइड। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस समय होती है कि आपके आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होता है। तो वो उन्होंने बहुत सहज भाव में कह दिया, लेकिन व्हेन अ प्लेयर विंस इट इज नॉट जस्ट वन प्लेयर, उसके पीछे कितना कितना फैमिली का और टीम का एक इमोशनल सपोर्ट होता है। एंड दिस इज अ कॉमन थिंग, यू नो, जब कोई प्लेयर सक्सेसफुल होता है दे विल टेक वन नेम कि उसने कॉन्वर्सेशन मेरे साथ की थी, मेरे पर फेथ रखा था, पलाने ने मेरे पर फेथ रखा था। हैविंग दैट वन पर्सन जो आपके ऊपर फेथ लूज नहीं करता, दैट गिव्स यू ट्रेमेंडस पावर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं, यदि ब्रह्मचार्य हो तो संतान का जन्म कैसे होगा? ये प्रश्न मेरे 13 साल के बच्चे का है जो अभी साइंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहा है।
3: एलिबेसी एक डिसिप्लिन होता है और वो डिसिप्लिन सब फॉलो करें ये कंपलसरी है ऐसा नहीं है
2: जी।
3: लेकिन बहुत लोग ब्रह्मचर्य या सेलिब्रेसी का डिसिप्लिन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो उनको सोल कॉन्शियस होने में मदद करता है। आप उस एक्ट के बियॉन्ड जाते हैं सो दैट यू कैन बिकम। जैसे आप देखो, दो वायर को अगर जोड़ना है तो आपको दोनों के आगे का रबड़ उतारना पड़ता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है। तो जब हम सुप्रीम बींग की बात करते हैं तो वो एक एनर्जी है जिसके ऊपर कोई भी और लेयर नहीं है
2: जी।
3: लेकिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो बॉडी का अट्रैक्शन होता है, बॉडी से अटैचमेंट होती है, बॉडी के प्रति ही सब कुछ हमारे मन में चलता है। सेलिबेसी जब कोई लोग प्रैक्टिस करते हैं, इट इज जस्ट अपलिफ्टिंग देमसेल्व्स, यू नो, वो प्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उस एवर प्योर से हमारा कनेक्शन इजी हो जाए। इट इज बाय चॉइस, वो डिसाइड करते हैं कि हम थोड़े समय के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से वो उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये कुछ कंपल्शन नहीं है, अगर थोड़े समय के लिए कोई इसको प्रैक्टिस करता है और उसको कोई डिवाइन एक्सपीरियंस होता है तो वो उसकी चॉइस है।
2: और सारी दुनिया नहीं कर रही तो पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही, तो घबराओ मत।
3: संतान उत्पत्ति के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम कई बार नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले आपको कोई पूछता कि अगर रिप्रोड्यूस करना है, संतान उत्पत्ति करनी है, तो आप एक ही तरीका बताते। आप कहते कि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज हम कहेंगे नहीं नहीं, साइंस ने बहुत टेक्निक्स निकालती हैं, आप IVF भी कर सकते हैं, आप सरोगेसी भी कर सकते हैं, कितने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 साल पहले हमसे ये कोई बातें करता तो हम कभी भी उस चीज पर विश्वास नहीं करते। हम कहते क्या बात कर रहे हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। सो पावर ऑफ साइंस, पावर ऑफ साइंस में हमने देखा कि ये चीज पॉसिबल है। पावर ऑफ साइलेंस, योग बल से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है।
2: अच्छा,
3: होती है। सन्यासी भी इन चीजों की बात करते हैं। सत्यों की दुनिया में हम कहते हैं सब संपूर्ण निर्विकारी है, लेकिन वहाँ भी बच्चों का जन्म होता है। पर जैसे यहाँ साइंस के बल से हुआ, वहाँ योग के बल से होगा, संकल्प के बल से सृष्टि चलती है। बट जस्ट लाइक व्हेन यू आर नॉट इन दैट फ्रेम ना, आप वो समझ नहीं पाते। साइंस प्रूफ की चीज है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस की चीज है। साइंस जिस दिन जिस चीज को प्रूफ कर देती है, आप कहते हैं ये हो सकता है। नहीं तो जब भी किसी ने कोई भी नई चीज की बात करी, ऐसा कोई मोबाइल होगा, फोन होगा, हम इतनी दूर बात कर पाएंगे, तो लोगों ने उनको क्या समझा?
2: बेवकूफ,
3: ये पागल है। किसी ने कहा ऐसा कोई प्लेन उड़ सकेगा, हम उसमें कहीं जा सकेंगे। सो टिल यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग एंड प्रूव इट, लोग आपको समझते हैं कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बेकार है, बेकार की बातें हैं। पर आपने प्रूव कर दिया, कहते हाँ इसमें कुछ बात है। तो साइंस की अथॉरिटी प्रूव करने की है, स्पिरिचुअलिटी की अथॉरिटी एक्सपीरियंस है। इसलिए जो एक्सपीरियंस कर लेता है, फिर उसको पता है कि वो परमात्मा सत्य है और वो जो बातें कह रहे हैं वो भी ट्रुथ है। तो हर चीज का प्रूफ स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। आप आत्मा को नहीं देख सकते, आप परमात्मा को नहीं देख सकते, पर आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस से बड़ी भी कोई अथॉरिटी नहीं होती।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कहने और करने में फर्क होता है, अपने वर्ड्स को एक्शन में कैसे बदला जाए, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर आउटस्टैंडिंग एक्टर एक जमाने में रहे हैं, अब हमारे बीच नहीं है, इरफान खान। उन्होंने एक बार मृत्यु के जस्ट थोड़े दिन पहले ही बोला था कि एक कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। बोलना बड़ा आसान है लेकिन हमेशा होता नहीं है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि संजू सैमसन जैसे लोगों ने तो उनको लेमन्स मिले, अपॉर्चुनिटी का उन्होंने लिया, उन्होंने लेमनेड बना दिया क्योंकि उसके पहले बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे। लेकिन बहुत लोगों को लेमन्स मिले और उनको पता नहीं था क्या करना है। तो ये इंसान पर डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है, लेमन्स पर डिपेंड करता है?
4: सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
3: What you make of that?
4: What you make out of that situation पर डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन बताकर थोड़ी ना आते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब जिंदगी आप पर प्रॉब्लम्स की गुगली फेंके तो उन्हें समझदारी से कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जिस भी समय सिचुएशन आई है, व्हेन यू आर सेइंग लेमन्स, व्हेन यू आर सेइंग टैंजरीन, मींस कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप नहीं चाह रहे थे। हर कोई मैंगोज एप्पल चाहता है और हर समय चाहता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी होगा जो कहेगा अच्छा नाउ आई एम रेडी। अगर एक आध सेटबैक भगवान देना है या हार्डशिप देनी है तो दे दो, आई एम रेडी। ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी लाइक्स की लाइफ स्मूथ हो, लेकिन पता है कि लाइफ इज अ जर्नी और वो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये हमें पता है। दैट इज द वे लाइफ इज। सड़क होती है, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर होता है। कब वो स्पीड ब्रेकर आएगा आपको नहीं पता है, कब वो चैलेंज आएगा आपको नहीं पता है। नाउ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, उतनी चॉइस और उतनी पावर आपके पास है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, इसके लिए मैं क्या योग्य उपाय करूं? उनका व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा और घर में बहुत झगड़े होते हैं। कृपया बताइए कि स्थिति को कैसे संभालें और घर का माहौल कैसे बेहतर बनाएं।
3: जब कोई शराब पीता है, मन व आत्मा बहुत कमजोर है। अगर उसको लत लग गई है, एक होता ना बाय चॉइस, कहीं कहते हैं कि एक तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ड्रिंक हैवी ड्रिंकर नहीं हूँ, आई एम एबल टू कंट्रोल इट। पर कोई भी चीज हैवी ड्रिंकर कोई एक दिन में थोड़ी ना बनता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। कोई चेन स्मोकर आज थोड़ी ना बनता, हर कोई ऐसे ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से जो उसकी प्राप्ति है वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस दिन आपको अच्छा लगा, थोड़ी हैप्पी फीलिंग थी, थोड़ी सी रिलैक्स्ड फीलिंग थी, अब वो जो फीलिंग है वो मेमोरी में स्टोर हो गई। अब जिस दिन आप कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे, वो मेमोरी आपको पुल करती है। तो आप कहते हैं अच्छा आज थोड़ा सा लेते हैं, करते करते उसकी डोजेस बढ़ती जाती हैं, तब हम उसको एक दिन कहते हैं कि अब ये एडिक्शन है, डिपेंडेंसी है, इसके बिना वो रह नहीं सकता। पर कोई भी एडिक्शन के पीछे कोई वॉइड होता है, वही खालीपन है। बिना खालीपन के आप उस चीज का सहारा नहीं लेंगे। अगर आप किसी भी सहारा ले रहे हैं किसी चीज का अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि जो एडिक्टेड होते हैं आप छुड़ा नहीं सकते उनको। आप कितना भी कह लें ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, पर उनको तो उतना ही समय अच्छा लगता है। उनको तो उतना ही समय दुख दर्द भूलता है, उनको तो उतना ही समय अपनी प्रॉब्लम से किनारा होता है, तो वो तो उनके लिए अमृत है ना, तो वो कैसे छोड़ेंगे? जब तक वॉइड नहीं भरेगा, खालीपन नहीं भरेगा, तब तक वो एडिक्शन छूटेगा नहीं। तो एज अ अगर वो वाइफ है, तो आप अपने घर का एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें कि जिस एनवायरनमेंट में आकर के उनको अच्छा लगे। अगर घर के एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, कलह कलेश है, दुख है, और समझो वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, व्यापार भी उनका ठीक नहीं चल रहा, तो व्यापार में भी दर्द और घर में भी दर्द, तो सुख तो फिर शराब के अंदर ही है ना। तो कम से कम घर में अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, उनके ऊपर विश्वास किया जाता है, उनको कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, तो एक दिन में तो नहीं छूटेगा, क्योंकि कोई भी संस्कार एक दिन में नहीं छूटता है। लेकिन आपकी पॉजिटिव सोच, आपका पॉजिटिव व्यवहार, आपका सपोर्ट, आपका सहारा उनको एक एक परसेंट ताकत देगा खुद को ठीक करने की। वो पहले खुद ठीक होंगे, फिर व्यापार ठीक होगा। तो हमें तो अपना रोल प्ले करना है। हम भी अगर उस दर्द में चले जाएंगे तो टोटल वॉइड हो जाएगा, टोटल नेगेटिविटी हो जाएंगे। इसलिए जो कर सकते हैं वो करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी कभी परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आइए इस पर गौर करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इसमें एक चीज और आती है, जब ईशान किशन के फाइनल मैच के पहले उनकी कजन सिस्टर और ब्रदर इन लॉ नहीं रहे ना कार एक्सीडेंट, मतलब जिंदगी आपको मौका नहीं देखती है कि आपके परफॉर्मेंस के लिए आइडियल कंडीशंस होंगे। ज्यादातर आइडियल कंडीशंस नहीं होते हैं, तो ये कमाल उन्होंने किया, क्योंकि जिंदगी हर बार फेयर नहीं होती है, इससे जूझना बहुत जरूरी है।
4: जी, अभी हमें कईयों की स्टोरीज पता चल जाती है, पर ये जीवन की यात्रा में तो हर एक के साथ ही होता होगा। आइडियल सिचुएशन तो सारी लाइफ बनी रहे ऐसा तो नहीं है, मे बी सम स्टोरीज वी आर हियरिंग टुडे एंड वी आर एबल टू सिंपथाइज विद देम, पर कितने लोग होंगे जो अपनी किसी न किसी चीज से अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं।
3: लेकिन कई बार सिस्टर क्या होता है, हम सब वेट कर रहे होते हैं कि जब एंड द टाइमिंग इज राइट, या कई बार सुनने को मिलता है कॉर्पोरेट जागरण में तो होता ही है, काम यार इसका सही समय नहीं आया, ये अभी करेंगे। लेकिन ज्यादातर जिंदगी में क्या होता है, आप तैयार नहीं होते और अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपको उसी समय लेना पड़ता है।
4: अपॉर्चुनिटी कब आएंगे आपको नहीं पता, पर प्रिपेयर्ड रहना आपके हाथ में। सी, जिसको हम लक कहते हैं वो क्या है, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी उस दिन पर आने वाली है जब आपके घर में कोई ट्रेजेडी है, नहीं कह सकते,
3: नहीं कह सकते।
4: वो अपॉर्चुनिटी किस दिन आएंगे पता नहीं है, लेकिन वो उस दिन पर आप रेडी थे, आइडियल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, पर आप इंटरनली उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, फिजिकली प्रिपेयर्ड थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे, तभी तो आप उस चीज को सफलता में कन्वर्ट कर पाए ना, वो ज्यादा जरूरी है। वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आइडियल सर्कमस्टेंसेस में आएंगे, वो तो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: समीर पटेल गांधीनगर से लिखते हैं सिस्टर कि मेरे पास सही गलत की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो मैं फॉलो नहीं कर पाता। जैसे मुझे पता है कि जंक फूड सही नहीं है और उससे नुकसान भी होता है, फिर भी जब कोई अच्छी डिश देखता हूँ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ?
3: तो उनकी बुद्धि शक्तिशाली है पर मन कमजोर है ना।
2: हाँ, सेल्फ कंट्रोल नहीं है शायद।
3: विल पावर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, दोनों जरूरी है। ये समझ लेना कि सही क्या है गलत क्या है, ये बुद्धि का काम है।
2: जी,
3: वो आप बुद्धिशाली हैं, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, आप डिसाइड कर पाते हैं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है।
2: तो क्या करें सेल्फ कंट्रोल के लिए?
3: जैसे वहाँ पर अगर बॉडी को आपको अगर शक्तिशाली बनाना है तो हेल्दी फूड भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए।
2: जी,
3: दोनों चाहिए ना, हेल्दी फूड भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर विजडम भी चाहिए और इनर पावर भी चाहिए। तो एक्सरसाइज से फिजिकल पावर बढ़ती है, मेडिटेशन से इनर पावर बढ़ती है। अगर आपको समझ है राइट रॉन्ग की और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करें, जिससे इनर पावर बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी। आप मन के मालिक बनेंगे। अभी आपकी बुद्धि स्ट्रांग है लेकिन मन के मालिक नहीं है, मन के गुलाम है। मन ने कहा ये खा लो तो खा लिया।
2: सही बात।
3: मन ने कहा ये बोलो तो बोल लिया, पी लो तो पी लिया, कर लो तो कर लिया। तो मन कमजोर है। तो मेडिटेशन के प्रैक्टिस से अपने मन को शक्तिशाली बनाएं कि बुद्धि जब कुछ कहती है तो वो मन उसकी बात माने। मन बच्चे की तरह है, तो बुद्धि जब उस बच्चे को कुछ कह रही है तो मन को उसकी बात माननी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर चाय थोड़ी सी ज्यादा गर्म होती है, गॉसिप थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पी होता है और प्लेलिस्ट एकदम शेफ्स किस की तरह होती है। अब ये ब्रेकफास्ट टाइप की बातें शुरू इसलिए हो गई है क्योंकि ये शो जो है वो ब्रेकफास्ट शो है और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है यहाँ पर तुम्हें गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। ऑफकोर्स आगे लाइंड अप है तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स, लेकिन बीच बीच में मैं भी आती रहूंगी, तुम्हें बताती रहूंगी अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, थोड़ी सी बॉलीवुड की गॉसिप्स तुम्हें देने वाली हूँ और साथ साथ में तुमसे यहाँ वहाँ की बातें करने वाली हूँ, थोड़ा सा बैक होम नॉस्टैल्जिया तुम्हें देने वाली हूँ एंड ऑफकोर्स थोड़ी सी बकबक भी करने वाली हूँ तुम्हारे साथ में। सो अपना सीट बेल्ट लगा लो, कॉफी पकड़ लो, चाय उठा लो और अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर चिपक के बैठ जाओ मेरे साथ क्योंकि शुरू हो चुकी है ये जर्नी जिसे हम कहते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग टू यू, वेकी वेकी। अभी चला दे तुम्हारे लिए मिर्ची दर बैंगर्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है।
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: भाई आज का दिन नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर ऑफ दिन है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब सबसे पहले पता करते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। सबसे पहले 1863 में शुरू हुई बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, अमेरिका के सिविल वॉर का एक टर्निंग पॉइंट। फिर 1867 में कनाडा ऑफिशियली बना अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन। आज वहाँ कनाडा डे सेलिब्रेट होता है। तो अगर आज तुम्हारे कनेडियन दोस्त थोड़े से एक्स्ट्रा पोलाइट लग रहे हैं, डोंट यू वरी, दे आर जस्ट बीइंग कनेडियंस। 1898 में थियोडोर रूजवेल्ट के रफ राइडर्स ने सैन हुआन हिल्स चार्ज किया, और नाम सुन के लगता है जैसे कोई बाइकर गैंग हो, लेकिन हिस्ट्री हैड डिफरेंट प्लान्स। 1916 में शुरू हुई थी बैटल ऑफ द सोम, वर्ल्ड वॉर वन की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग बैटल्स। 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेंडन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को दिए दो फाइनेंशियल जायंट्स, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। और 1997 में हांगकांग ब्रिटिश रूल से ऑफिशियली चाइना को हैंड ओवर हुआ अंडर द आइडिया ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम्स। और इंडिया में आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। द इनक्रेडिबल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनका बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों आज ही के दिन है। तो अगर आज किसी डॉक्टर को मिलके उसे थैंक यू बोल के जादू की झप्पी दे सको तो जरूर देना। और क्योंकि लाइफ सिर्फ सीरियस नहीं होती, आज इंटरनेशनल जोक डे भी है, इसलिए ऑफिस में अगर बॉस बोले कैन यू वर्क लेट, बस होप करना कि वो जोक कर रहे हो। और साथ साथ में आज है अमेरिकन जू डे, इंटरनेशनल रेगे डे एंड क्रिएटिव आइसक्रीम फ्लेवर्स डे। टेल मी द वियर्डेस्ट आइसक्रीम फ्लेवर दैट यू हैड। फॉर मी इट्स टूथपेस्ट आइसक्रीम। फटाफट से मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और यह है मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर बॉलीवुड की चाय हमेशा गर्मा गर्म सर्व की जाती है। तो आज की टी है एक्टर युद्धवीर अहलावत के बारे में, जिनको अभी रिसेंटली तुमने फिल्म कर्तव्य में देखा होगा, सैफ अली खान की लेटेस्ट मूवी जो नेटफ्लिक्स पर है। उसमें युद्धवीर ने मूवी में एक 16-year-old टीनेजर हरपाल का कैरेक्टर प्ले किया है। इनफैक्ट इन सम वेज इज ऑल्सो द सेंट्रल कैरेक्टर इन द मूवी, उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीजें होती है मूवी में। एंड विदाउट गिविंग एनी spoilers, I just want to say he is also one of the best actors in the movie. लेकिन उनके बारे में चौंका देने वाली एक बात पता चली है, जिसकी वजह से the internet is going gaga over him. In the movie, he is playing a 16-year-old kid's character. लेकिन actually में उनकी age है 33 years old. और उनके फोटोज देखकर उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। सबसे मजेदार पार्ट यह है कि सेट पर भी सब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। बाद में जब डायरेक्टर ने सबको बताया कि गाइस रिलैक्स, ही इज एक्चुअली 33, तब जाकर सैफ अली खान और संजय मिश्रा उन दोनों ने उनसे प्रॉपर ग्रोन अप्स वाली कॉन्वर्सेशन शुरू की, और सैफ तो उनकी रियल एज जानकर लिटरली शॉक में पड़ गए। एंड आई स्वेयर इफ यू लुक एट हिज पिक्चर यू विल बी शॉक्ड टू। मतलब कुछ लोगों के जीन्स इतने पावर फुल होते हैं कि पासपोर्ट की एज कुछ और होती है और फेस पर कुछ और लिखा होता है। और यहाँ मैं एक ऑल नाइटर पुल करने के बाद सीधे अपनी दादी माँ लगने लगती हूँ। वैसे अगर तुम भी ऐसे लोगों में से हो जिन्हें हर जगह अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, कांग्रेचुलेशंस, फ्यूचर में यही कॉम्प्लीमेंट्स का फिक्स डिपॉजिट बनने वाला है तुम्हारे लिए। राइट नाउ चेक आउट माई सोशल्स, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड सुन रहे हो तुम मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब पता करते हैं वेदर का हालचाल क्या है। फिलहाल टेम्परेचर है अराउंड 73 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज जो है वो मोस्टली क्लियर है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। परफेक्ट टाइप का वेदर है कसम से, और टेम्परेचर फील होगा 72 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। लेकिन ये सुनो, 9 से 10 बजे के बीच में थोड़े से क्लाउड आ जाने वाले हैं, उसके बाद फिर पार्टली क्लाउडी स्काइज हो जाने वाला है। तो सूरज आज फुल बॉलीवुड हीरो की एंट्री मारेगा, मतलब कभी कभी दिखाई देगा। आज के दिन हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 96 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर होने वाला है 99 डिग्रीज फारेनहाइट तक, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी तक। लेकिन ह्यूमिडिटी और सनशाइन मिलकर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वेदर डिपार्टमेंट में, और इसीलिए हमें थोड़ी सी गड़बड़ फील होने वाली है। गुड न्यूज एक मेरे पास है कि रेन का 0% चांस है। लास्ट 24 आवर्स भी ड्राई थे और अगले 24 आवर्स भी ड्राई होने वाले हैं, जस्ट लाइक माई ह्यूमर। मतलब कि आज अम्ब्रेला को घर पर रहने दो, लेकिन खुद का पानी लेकर बाहर निकलना जरूरी है, यानी कि वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए। यू गॉट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज आज एक एक्सट्रीम हीट वार्निंग भी है और एयर क्वालिटी अलर्ट भी इशू हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून में आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना या बहुत ही लिमिटेड करना, और बाहर जाओगे तो SPF 50++++ वाला सनस्क्रीन मल कर जाना अपने मुंह पर, हाइड्रेटेड रहना, और अगर किसी को देखकर लगे कि वो मिर्चीदार हॉट हो रहा है तो उसे थोड़ा सा पानी पिला देना। तो इन शॉर्ट आज का वेदर जो है ना टिपिकल हमारी बुआओं की तरह है, सुबह सुबह प्यार से मिलेंगे लेकिन दोपहर आते आते लेक्चर दे सकते हैं। और अगर तुमको वेदर के अपडेट्स के साथ थोड़ी सी मस्ती भी चाहिए तो फटाफट से फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब चलने वाला है मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले अमेरिका से एक बिग लीगल अपडेट आ रही है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट सॉट टू लिमिट बर्थराइट सिटीजनशिप। द कोर्ट लेफ्ट इन प्लेस अ लोअर कोर्ट डिसीजन ब्लॉकिंग द ऑर्डर, सो द पॉलिसी कैन नॉट टेक इफेक्ट व्हाइल द लीगल प्रोसेस कंटिन्यूज। एज ऑलवेज लीगल मैटर्स लाइक दिस कैन कंटिन्यू थ्रू द कोर्ट्स, सो वील कीप एन आई ऑन हाउ द स्टोरी डिवेलप्स। नंबर टू पर, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है इट कैरिड आउट स्ट्राइक्स targeting ISIS positions in parts of Pakistan, claiming those locations were being used to plan attacks. The situation comes after recent cross-border tensions, making it another reminder that regional security issues remain serious and closely watched. And finally, for football fans, Norway scripted history with their first ever FIFA World Cup knockout victory, beating Cote d'Ivoire 2-1. Antonio Nusa scored first, Amad Diallo leveled it, and Erling Haaland sealed the win. And next stop for Norway, a blockbuster clash against Brazil. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein Insta aur X par. Mera naam hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
1: Nahi, kaun baat kar raha
2: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई। रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
2: ओ मेरी बात सुन।
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया।
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा है,
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और पता है चाइना में एक डेफ और म्यूट जेंटलमैन जिनका नाम है ले ज़ाचिंग, ये 35 इयर्स के बाद अपनी फैमिली से फाइनली मिल पाए। ना ही डीएनए टेस्ट हुआ है, ना ही कोई वायरल वीडियो हुआ, बल्कि एक चाइल्डहुड हैबिट की वजह से। बचपन से ले जो है वो अपना नाम उल्टा लिखते थे, यानी कि बैकवर्ड्स। और सालों के बाद एक चैट ग्रुप में उनके भाई की नजर इसी यूनिक हैबिट पर पड़ी। एक छोटी सी डिटेल और पूरा परिवार जो है वो फिर से जुड़ गया। स्टोरी यहाँ से और इमोशनल हो जाती है। 1991 में ले अपने दोस्तों के साथ चुपके से ट्रेन में चढ़ गए थे। सफर के दौरान वो सो गए थे और फिर उनकी फैमिली से बिछड़ गए थे। कौन सोच सकता है कि 35 इयर्स के बाद एक पुरानी आदत उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा देगी। कभी कभी हम सोचते ना कि हमारे छोटे छोटे क्वर्क्स जो है ये लोगों को इरिटेटिंग लगते होंगे, दे विल स्टॉप लविंग अस इफ वी कंटिन्यू डूइंग दोस थिंग्स, लेकिन यही चीजें हमें यूनिक बनाती है। अब देखो कैसे किसी के सिग्नेचर नाम लिखने के स्टाइल से उनकी पहचान उनके घर वालों को हुई। और एक बात और है कि आज घर पर ही किसी अपने को कॉल कर लेना, ये पूछ लेना खाना खाया कि नहीं खाया। कभी कभी ना एक छोटा सा केयर, एक छोटा सा कंसर्न किसी इंसान को बहुत जरूरी होता है जो उन्हें मिल नहीं पाता। और हो सकता है ऐसे मौके पर तुम अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी कजन, अपने किसी लव्ड वन के काम आ जाओ। और काम से मुझे याद है एक काम की बात तुम्हें बतानी है मुझे। आरके ज्वेल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, यानी कि जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है। तुम पे करते हो फॉर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड की वैल्यू। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सब कुछ तुम्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आरके ज्वेल्स पर। तो वीकेंड पर अगर गोल्ड या डायमंड खरीदने का प्लान है तो यहाँ जाना तो बनता है। और इसी बात पर इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये मिर्ची मॉर्निंग्स पर जुलाई 1st के बर्थडे बेबीज को विश करने का टाइम। आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम्हें एक ज्यादा की जप्पी और साथ में पपी। और अब सुनो कि बर्थडे गैंग तुम्हारी काफी फिल्मी है। सबसे पहले डैन एक्रॉयड और साथ में बीच पे स्लो मोशन की क्वीन पैमेला एंडरसन, जिनका नाम सुनते ही 90s का फ्लैशबैक आ जाता है। एलन रक भी आज के दिन अपना बर्थडे मना रहे हैं, एंड साथ साथ में लिव टाइलर, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और आर्मागेडन में सबका दिल जीता था, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और जेंजी स्क्वाड के लिए स्टॉर्म रीड, जिसे तुमने यूफोरिया और द लास्ट ऑफ अस में देखा होगा। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो ये याद रखो कि बर्थडे के साथ सिर्फ खुशियां बढ़नी चाहिए, स्ट्रेस लेवल नहीं। मिर्ची की तरफ से तुम सबको लोड्स ऑफ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ढेर सारा सक्सेस, और साथ में रिलेटिव्स का प्रेशर थोड़ा सा कम मिले। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में अपने बर्थडे सेल्फीज, इनविटेशंस, शाउट आउट्स, केक्स, जो कुछ भी भेजना चाहते हो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड साथ साथ में व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello G, time for your gold and silver rate update on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,320. $4,320 पट रहा है उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे, जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट, 22 कैरेट गोल्ड की चेन, 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड. आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए. मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग.
1: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवर का 3। यहाँ पे 3 बड़ी खबरें तुमको मिलती है। सबसे पहले टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टेडली प्लान्स अनदर राउंड ऑफ लेऑफ्स व्हिच कुड अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस सेल्स एंड कंसल्टिंग रोल्स। रिपोर्ट्स से द अनाउंसमेंट मे कम एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। अगर तुम टेक इंडस्ट्री में हो तो बस ये याद रखो कि नेटवर्किंग फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 2 पर इलॉन मस्क इज मेकिंग हेडलाइंस अगेन आफ्टर अ पोस्ट ऑन एक्स अबाउट फेमिनिज्म, चिल्ड्रन एंड हैप्पीनेस स्पार्क्ड अ ह्यूज ऑनलाइन डिबेट। सपोर्ट भी मिला है और क्रिटिसिज्म भी मिला है और सोशल मीडिया ने अपना फेवरेट हॉबी कंटिन्यू रखा है, कॉमेंट सेक्शन को रेसलिंग रिंग बनाने का। एंड आखिर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रक रशियाज लार्जेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इन द मॉस्को रीजन, क्लेमिंग इट वॉज बींग यूज फॉर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी डेवलपमेंट फास्ट मूविंग है और सिचुएशन को दुनिया भर में क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एंड आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। फिलहाल मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। डू फॉलो मी एट MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने नहीं है। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
2: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
2: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
2: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
1: मजे आ रहे हैं,
2: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
1: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला और वेलकम टू राशि जोन पार्ट वन ऑन मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, अगर किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, रिएक्शन तो बनता है लेकिन फुल बॉलीवुड रिवेंज सीक्वल की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लासी रहो। लकी कलर इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, गट फीलिंग सही हो सकती है लेकिन गूगल को भी खोल लो, होमवर्क के साथ साथ हंच कंबाइन करोगे तो शायद जैकपॉट मिल जाए। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सोशल बैटरी 100% है, फ्रेंड्स फैमिली कॉलीग्स के साथ वाइब सेट हो जाएंगी, तो घर से बाहर निकलो, लाइफ सिर्फ ईमेल्स का नाम नहीं होता है। लकी कलर इज डार्क ब्लू, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, क्विक कैश का चांस मिल सकता है लेकिन ये याद रखो बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, हार्ट बैलेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव का आरओआई सबसे बेस्ट होता है। लकी कलर इज पर्ल, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, जो चीज तुमको ट्रूली एक्साइट करती है उसी पे फोकस करो, आज की मेहनत फ्यूचर का स्टैंडिंग ओवेशन बन सकती है। स्पॉटलाइट तुम्हारा वेट कर रहा है। लकी कलर इज गोल्डन, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, नेगेटिव लोगों को म्यूट कर दो, लाइफ का अल्गोरिथम पॉजिटिविटी पे चलाओ और आज जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ग्रो कर पाओगे। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 22। एंड दैट्स राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर अभी थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना,
0: हिट

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And I'm back with Rashi's own part Dwitiya. Ab fasten your seat belts kyunki hum Rashiyon ki baat karne wale hain.
2: Mirchi Rashi's own.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, लाइफ थोड़ी सी मैसी लग सकती है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ट्रस्ट द प्रोसेस, कभी कभी जूम आउट करके देखना भी जरूरी होता है। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 18। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, बॉस, क्लाइंट या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलना हो तो चार्म को ऑन रखो। आज फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन बनने वाला है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना इजी है, फिनिश करना इज द रियल फ्लेक्स। आज इनकम्प्लीट लिस्ट को कंप्लीट करने का दिन है। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 30। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, किसी बात का सस्पेंस चल रहा है, रिलैक्स। हर सीक्रेट तुम्हारे वाईफाई पासवर्ड जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फोकस ऑन योर ड्रीम्स इंस्टेड। लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज तुम स्पॉटलाइट में हो, एंजॉय इट। बस ईगो को फ्रंट सीट मत दो, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस यूनिवर्स को चैलेंज करता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 24। पाइसीज यानी मीन राशि, प्रॉब्लम्स को गोस्ट मत करो, वो सीन पे नहीं जाती है। फेस इट टुडे, आज तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा रियलिटी मैनेजेबल होगी। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 5। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स और जाकर मुझसे कनेक्ट भी कर लो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी दा नाड़ा किन खिचिया।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: एक सीक्रेट बताओ, देसी लोग दो चीजों पर सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, सेल कब लगने वाली और किस सेलिब्रिटी की किसके साथ फोटो आई है। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड फॉर ऑल द फिल्मी पीपल आउट देयर, अभी फिलहाल मेरे रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन जाने से पहले क्विक बॉलीवुड बज तुम्हें बताकर जाती हूँ। एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने हाफ ईयर फोटो डंप शेयर किए हैं और ईगल आइड फैंस ने उसमें से रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया को स्पॉट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से इनके ब्रेकअप के रूमर्स फुल स्पीड पर इंटरनेट पर चल रहे थे, स्पेशली एक वायरल रेडिट के पोस्ट के बाद। लेकिन कृति की लेटेस्ट पोस्ट देखते ही फैंस ने डिटेक्टिव कैप्स उतार दिए हैं। एक फैन ने लिखा है दैट 15th स्लाइड हिट डिफरेंट, और दूसरों ने लिखा है कि रूमर्स देख के जो टेंशन हुई थी अब वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब सच क्या है सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यार सोशल मीडिया पे ना सिर्फ एक पिक्चर दिखाई देता, पूरी की पूरी स्टोरी नहीं दिखाई देती है। इसीलिए थोड़ा सा चिल मोड में रहा करो, थोड़ा सा स्माइल किया करो और थोड़ा सा लेस ओवर थिंकिंग किया करो अगर किसी सेलिब्रिटी के बारे में करते हो और अपने बारे में भी करते हो तो भी चिल मोड में रहा करो। वैसे भी हम सबके फोटो डंप्स में से एक आध ऐसी पिक्चर होती है जिसे घर वाले और फ्रेंड्स और रिश्तेदार और सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, लेकिन सानू की फर्क पैंदा है, असी ते खाओ पियो ते ऐश करो में बिलीव करते हैं। अब इसी बात पर प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय, तुम बने रहो मिर्ची पर, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी। तब तक के लिए तुम मुझे टैगर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। Stay tuned and stay hot.

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, it's hot.
2: Jani, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लव्स अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना, जी इस नाम से भी फिल्में बनती थी, इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन ने शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड नहीं देखते आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है, क्या है?
5: चाकू,
4: हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
2: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: नहीं दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहा
4: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
3: क्या?
4: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके
4: ओके, आई लव यू,
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
0: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे सवालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
5: Pranjit with Charu only

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
2: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
1: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
2: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: sare ga ma 1 2 3 4
1: sare ga ma sare ga ga sare ma ga re sa sare ga ma sare ga ga sare ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa
2: jani ye hamara special show hai rajkumar special
3: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
4: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
3: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं सही में, इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा
4: है? पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन।
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो देख, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था,
3: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
3: रॉन्ग ले रहा हूँ
4: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
4: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
3: यार।
5: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स with Jaru.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में से एक है पाकीज़ा फिल्म का ट्रेन वाला सीन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स है वो डायलॉग जो राजकुमार साहब ने कहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है शायद इसीलिए वो आइकॉनिक बन गया है। तो सीन कुछ यूं होता है, राजकुमार साहब का जो किरदार है वो आनंद फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, इत्फाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था, क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म ही रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो, उनके ढेंटेड एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझमें भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू इससे पाया है आशिक की नजर पाई नहीं, जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब की एक पॉपुलर इमेज ये थी कि वो बहुत आउटस्पोकन, बिंदास, इसेंट्रिक, सनकी टाइप के थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे तो थे ही, लेकिन उनकी एक दूसरी साइड भी थी जहाँ वो बहुत ही काइंड, मॉडेस्ट और नरम दिल के थे। लेकिन यहाँ पर हम उनका एक सख्त डायलॉग सुनने वाले हैं वक्त फिल्म से। एक्चुअली 1965 की वक्त फिल्म है जिसने उनकी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी को एक पहचान दी। इसमें उनके डायलॉग्स काफी हिट हुए थे, खास करके चिनॉय सेठ प्ले कर रहे रहमान के साथ जो उनके इंटरैक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरैक्शन सुनते हैं।
2: चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनॉय सेठ।
1: तो ये एंड में जो आवाज आई ना, तो इसमें वो इस सीन में वो गन शॉट से दो लैंप फोड़ देते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को राजकुमार साहब के डायलॉग्स बहुत महंगे पड़ते थे, कभी वो लैंप फोड़ देते थे, कभी ग्लास तोड़ देते थे। खैर, नरम दिल इंसान जब गुस्सा करता है तो काफी कड़क हो जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना, बाना। मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो को, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है
3: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहा है।
4: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
3: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
0: पुरानी जीन्स with चारू, only on

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार साहब जिस तरह से मीना कुमारी जी से प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार करने वाला सबको मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मोहब्बत के लिए इस फिल्म में वो अपने घर वालों से बगावत कर लेते हैं और इस बगावत वाले सीन के बाद ना एक सीन होता है जहाँ पे ये दोनों राजकुमार और मीना कुमारी एक बालकनी में खड़े होते हैं और बालकनी से सामने से नजारा दिख रहा होता है, पहाड़ होते हैं और झरना बह रहा होता है। और इसमें ना सिचुएशन कुछ यूं होती है कि मीना कुमारी जी ऐसा नाटक कर रही होती हैं कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं। तो इस सीन में सुनिए इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है।
2: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
3: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
1: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mercy, New York. It's hot.
1: 브런치 with Charu.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: कितनी ही सॉलिड होगी वो डायलॉग डिलीवरी जो राइटर्स को अच्छे डायलॉग्स लिखने पर मजबूर कर देती होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी ही डायलॉग डिलीवरी करते थे राजकुमार साहब। किसी भी फिल्म में राजकुमार साहब हो, ये तो तय होता था कि उसके डायलॉग एकदम धांसू होंगे। ऐसी एक फिल्म थी लेट 80s की, मरते दम तक। इस फिल्म के उनके कुछ डायलॉग्स काफी पॉपुलर हैं, सुनिए जरा।
2: हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा, डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।
1: क्या बात है भाई, वैसे आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी ना, प्लीज देखें, खास करके इसके दो ग्रेट एक्टर्स के लिए, राजकुमार साहब और ओम पुरी साहब। दोनों इसमें गैंगस्टर प्ले करते हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, और क्या डायलॉग बाजी है दोनों के बीच में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई ऐसा सुनने में आता है कि राजकुमार साहब के फिल्मों के सेट पे अलग ही तरह के टैंट्रम्स होते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बहुत पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग तो थे, लेकिन उनके टैंट्रम्स भी होते थे। जैसे कि उनको सफेद जूते पहनना बहुत पसंद था। कई बार यूं भी होता था कि सीन में वो जूते सूट भी नहीं कर रहे होते थे या रिक्वायर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन उनको पहनने होते थे। वैसे चाहे डिशुम डिशुम, ढेंटड़न, एक्शन टाइप के रोल्स हों या सॉफ्ट रोमांटिक डायलॉग्स हों, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी पार एक्सेलेंस। उनकी ही रांझा फिल्म का ये डायलॉग सुनिए जरा।
2: मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में दिल में हीर की तस्वीर देखोगे।
1: क्या बात है। और इस फिल्म में उन पर पिक्चराइज्ड एक गाना, वो तो एक तरह का एंथम बन गया था उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। इनफैक्ट आज भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आप अपने लाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से बेजार हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए और ये गाना सुन लें तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: यार कुछ लोगों के लिए टॉक्सिसिटी बिकम्स अ ड्रग.
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, एग्जाम्पल सबसे पहले कोट करना चाहती हूँ एक रिलेशनशिप का. आपने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत सारे लोग टू एंड फ्रो करते रहते हैं अपने रिलेशनशिप में. दे कीप स्विंगिंग इन एंड आउट कि भाई किसी दिन बहुत मूड खराब हो गया तो सब कुछ खत्म कर देना है, लेकिन फिर क्या है कि रह भी नहीं पा रहे उस इंसान के बिना. और ऐसी ही सी फीलिंग मुझे मिली है अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर. देखो अभी मैंने आपको कल बताया था कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि फिरोज नाडियाडवाला ने लिटरली ये बोल दिया है कि भाई ये फिल्म बहुत जल्द तैयार होने वाली है, इट इज इन द पाइपलाइन. लेकिन अब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा है कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3. तो भाई देख लीजिए कि ये मूवी बनेगी भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सीधे बोला कि सब कुछ मुझे तो अभी के लिए डामाडोल लग रहा है यार. एंड दिस इज वाई आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ टॉक्सिसिटी एज अ ड्रग. वैसे रिलेशनशिप में आप भी ऐसे टू एंड फ्रो कर रहे हैं, देन इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप से ही एक सही सवाल जरूर करें. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल आप
1: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
2: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी होगी आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मार काट को थोड़ा हटाने की बात कर दी है सीबीएफसी ने। मैं बात कर रही हूँ अबाउट अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म अल्फा, जो YRF के स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लीड मूवी होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट एंड शर्वरी लीड रोल्स निभाते नजर आ रही हैं, अलॉन्ग विद बॉबी देओल इन द मूवी एज वेल। सो सीबीएफसी ने फिल्म से मल्टीपल स्टैबिंग विजुअल्स सेंसर करवाने के साथ साथ फाउल वर्ड्स भी डिलीट करवाए हैं, साथ ही सारे गाने में सबटाइटल्स भी इंसर्ट करवाया है। सो ऑल इन ऑल द मूवी इज गोना बी ऑफ 2 hours 20 minutes and 45 seconds। सो शिव रवाल डायरेक्टोरियल ये फिल्म 3rd of July को रिलीज होने वाली है। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स। बाबू मोशाय, इक्का का ट्रेलर देखा या नहीं भाई? सनी देओल और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ इन दिस इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा इज लुकिंग रियली रियली इंट्रीगिंग। 10th of July को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करना शुरू करेगी, जिसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। और इस फिल्म में सनी देओल एंड अक्षय खन्ना के अलावा दिया मिर्जा एंड तिलोत्तमा शोमे जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। SS राजमौली वाराणसी को लेकर काफी अल्टीमेट प्लानिंग्स कर रहे हैं। बैटल सीक्वेंस को लेकर एक प्लान ये आया है बाहर, दैट इसमें 3500 जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल होने वाला है, और इनको फीचर करते हुए इस सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में बहुत जल्द होने वाली है। मूवी के लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वी राज, विच इज गोइंग टू बी अ माइथोलॉजिकल एक्शन एपिक। और इसके रिलीज की प्लानिंग अप्रैल 2027 की हो रही है। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची आहा फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हर रोज की बात, इट्स टाइम टू फाइंड द फिल्मी कीड़ा आपके अंदर का। द थिंग इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर मैसेज करना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो चलिए आज के गेम की शुरुआत करते हैं, जिसको खेलने के लिए आई कॉल्ड अमन जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: बनारस से हूँ और बैंगलोर में जॉब करती हूँ।
0: अरे रे, बनारसी बाबू हैं आप, आपके पड़ोसी हैं हम बिहार से हैं वैसे तो।
3: अरे बढ़िया बढ़िया।
0: ओके सर, तो क्या आप तैयार हैं ये फिल्मची गेम खेलने के लिए?
3: जी जी तैयार हूँ मैं।
0: ओके, तो आपका पहला सवाल है, समंदर के कलर के नाम वाली फिल्म जिसमें शार्क्स थी।
3: ब्लू।
0: क्या बात है, ब्लू फिल्म के किस हीरो को इंडस्ट्री में बाबा बोलते हैं?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में डीन से पूछते हैं कि ये बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?
3: मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी
0: किस फिल्म में एज अ जर्नलिस्ट अफगानिस्तान में वॉर के आफ्टर मैथ को कवर करने जाते हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: बहुत बढ़िया, काबुल एक्सप्रेस में अरशद वारसी के साथ ही जर्नलिस्ट कौन है?
3: जॉन अब्राहम
0: किस फिल्म में टैक्सी में ट्रैवल करते हैं?
3: टैक्सी नंबर 9211।
0: क्या बात है, एकदम हार्ड कोर फिल्मची हैं आप। टैक्सी नंबर 9211 में टैक्सी ड्राइवर कौन है?
3: नाना पाटेकर
0: किस फिल्म में आलू और कांदा बेचते हैं?
3: वेलकम।
0: वेलकम में ऊंचा लंबा कद किसका है?
3: कटरीना कैफ का।
0: कटरीना कैफ एक ISI एजेंट किस फिल्म में बनी है?
3: एक था टाइगर।
0: कहीं तो रुक जाओ सर। एक था टाइगर में रॉ एजेंट कौन है?
3: एक था टाइगर में रॉ एजेंट सलमान खान।
0: लवली सिंह किस फिल्म में है?
3: लवली सिंह रिपोर्टिंग बॉडीगार्ड।
0: ओहो, बॉडीगार्ड में सलमान किसके बॉडीगार्ड है?
3: करीना के।
0: करीना कपूर फ्लाइट अटेंडेंट किस फिल्म में बनी है?
3: क्रू
0: की कौन सी हीरोइन कॉकटेल 2 में भी है?
3: कृति सैनन
0: जानवरों की डॉक्टर किस फिल्म में बनी है?
3: वरुण धवन के साथ कौन सी? भेड़िया।
0: कहीं नहीं रुकने वाले ये। भेड़िया में किसके बम पे भेड़िया काट के चला जाता है?
3: वरुण धवन के।
0: वरुण धवन एक टेलर किस फिल्म में बने?
3: सुई धागा।
0: बाप रे, सुई धागा में उनकी वाइफ कौन है?
3: विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा हाई एंड फॉरेन गुड्स किस मूवी में स्मगल करती है?
3: बदमाश कंपनी
0: में मास्टर माइंड कौन है?
3: शाहिद कपूर है।
0: शाहिद कपूर का डबल रोल किस फिल्म में है?
3: शाहिद कपूर का डबल रोल कमीने।
0: कमीने में उनकी को स्टार कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा
0: की किस फिल्म का नाम मिठाई के नाम पे है?
3: बर्फी।
0: बर्फी में हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड कौन है?
3: हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर के पास सुपर पावर किस फिल्म में है?
3: तो ऐसे तो फुल सुपर पावर उसको बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र में अगर चाहे तो। मतलब
0: बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ अगर मेरे पास होते तो मैं आपको देने का सोचती सर, बट आपने जो एक गो में ये फिल्मची गेम एकदम टॉप कर लिया है उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी इधर उधर ऐसे करवटे ले रहा है तो उसको जगा के रखिएगा, क्योंकि कल ये गेम वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, जहाँ आपको मैं अपने इंस्टा पे जाके मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने की बात कहती हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमने आरुल के साथ शुरू किया, बट अब रूहान आगे का गेम कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार है रूहान?
3: या श्योर।
0: ऑल राइट, सो माय क्वेश्चन इज कि दीपिका पादुकोण किस फिल्म में अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आई हैं?
3: बाजीराव मस्तानी।
0: यस, पहला इंसान जिसने एकदम एक बार में ही गेस कर लिया। बाजीराव मस्तानी में किससे उसका गुरूर छीन लिया जाता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: सब पता है लड़के को। प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में सुपर हीरो की वाइफ बनी है?
3: क्रिश 3।
0: क्या बात, क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म में मुगल राजा बने हैं?
3: जोधा अकबर।
0: सब पता है भाई, जोधा अकबर में अकबर की राजपूत वाइफ कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में शायरा बनी है?
3: ऐ दिल है मुश्किल।
0: ऐ दिल है मुश्किल में अपनी दोस्त से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने किस फिल्म में अपना टावल गिराया है?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनकी हीरोइन कौन है?
3: आई गेस इट्स सोनम कपूर।
0: यस इट इज। सोनम कपूर की किस फिल्म में कबूतर का नाम मसक कली है?
3: दिल्ली 6 मैंने देख रखी है।
0: क्या बात, दिल्ली 6 के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें उनका सरनेम आता है?
3: बोल बच्चन।
0: बोल बच्चन में झूठ किसको पसंद नहीं?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में 2 अक्टूबर को पंजिम जाते हैं?
3: दृश्यम ऑफ कोर्स।
0: दृश्यम में लेडी पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: तब्बू।
0: तब्बू की फिल्म जिसमें वो अपने पति को मार देती है?
3: अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अंधे होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना किस फिल्म में फोन पे लड़की बन के बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: ड्रीम गर्ल आपकी कौन है?
3: नो वन, आई एम
0: नेवर माइंड, बट सिंगल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये टैग नहीं दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: Well, I'm sure ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी एकदम से जाग जाता होगा, तो उसको जगा के ही रखना क्योंकि हर रोज इस गेम का सिलसिला मेरे शो पे जारी रहता है। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर मुझे डीएम करो, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Energia. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: हेलो विपिन,
1: कौन बोल रहा है?
2: आहिस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगक। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: कसम से मजा चार गुना हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: आप अपने गंदे दिमाग को इधर उधर मत ले जाओ। मैं कंटेंट देखने के बाद मजा चार गुना होने की बात कर रही हूँ यार, स्पेशली वो कंटेंट जिसमें स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। एंड थैंकफुली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का परसोना थोड़ा चेंज हो रहा है, आउटलुक चेंज हो रहा है, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स अपने फिल्मों में भी एंड ओटीटी रिलीजेज में भी। वेल, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स, स्पेसिफिकली वेब सीरीजेस की बात कर रही हूँ जिन्होंने स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दिल्ली क्राइम, नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट शी। वेल, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, क्रिएटेड एंड रिटन बाय इम्तियाज अली एंड दिव्या जौहरी, बाकी इसे डायरेक्ट किया है आरिफ अली और अविनाश दास ने। एंड ये एक कहानी है ऑफ अ फीमेल कांस्टेबल हु गोज अंडर कवर टू बस्ट एन अंडरवर्ल्ड गैंग, एंड दिस स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर एक्चुअली ब्रेक्स ऑल द जेंडर बायसेस इन दिस सीरीज। देख के जो मजा आएगा क्या ही बताऊं मैं आपको। एंड नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन, चेरी ऑन द केक इज विजय वर्मा इन दिस सीरीज। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे अरण्यक की बात करते हैं, डायरेक्टेड बाय विनय वाइकुल। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें रवीना टंडन लीड रोल में नजर आई। वेल, सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ सिरोहना जो हिमाचल प्रदेश में है, रवीना टंडन एक कॉप का किरदार निभा रही है जिसका नाम है कस्तूरी डोगरा, एंड शी हरसेल्फ इज बैटलिंग विद हर ओन फैमिली इश्यूज, बट साथ ही वो अपनी टीम के साथ मिलकर हिमाचल में हुए एक फॉरेन टीनेज गर्ल के एलिजेड रेप और मर्डर केस को सुलझाती हैं। सो येस, आई वुड से दैट अगेन, दैट किसी भी सीरीज या फिल्म में एक स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर को देख के मजा चार गुना हो जाता है। वेल, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कोई सीरीज या फिर फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इंटरेस्ट लेवल 200% हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जब भी किसी फिल्म में या फिर किसी OTT सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है, वेल आई एम श्योर यू वुड कनेक्ट विद दिस फीलिंग ऑफ माइंड। वेल इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने अमेजिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हमें दिए हैं। वेल इन द लिस्ट नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे बेगम्स, डायरेक्टेड बाय अलंकृता श्रीवास्तव, वर्नीला चैटर्जी एंड इति अग्रवाल। ये ड्रामा वेब सीरीज पूजा भट्ट का कमबैक भी थी। वेल इट एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ 5 एम्बिशियस वुमेन जो अपने लाइफ के ड्रीम्स और डिजायर्स के बीच सोसाइटी से भी लड़ रही हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पे एक्सप्लोर भी कर रही हैं। In short, it is a series that a modern day woman would definitely resonate with. Moving on, number 5 pe let's talk about My, yet another thriller series on Netflix jo ek strong female character hamare beech lekar aati hai. Well, My is directed by Anshai Lal and Atul Mongia, jisme Sakshi Tanwar lead role mein nazar aa rahi hain. Well, the series follows the story of a grieving mother jiski beti ki tragic maut ho jati hai. Moreover, she discovers the criminals behind the daughter's death and turns merciless to find the real cause. In short, ye character that is Sheel Chaudhary, played by Sakshi Tanwar, is a character that shows the true power of a mother. So yes, agar aap bhi meri is list mein koi strong female character add karna chaho, then feel free to do that. MIRCHISHRUTI, that is Mirchi Shruti ke naam se, main Facebook, Twitter aur Instagram pe milungi. In the meantime, enjoy the songs right here on Mirchi with this ladki badi filmy, It's Hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मारकाट को थोड़ा हटाने की बात कर दी है सीबीएफसी ने। मैं बात कर रही हूँ अबाउट अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म अल्फा, जो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लेड मूवी होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट एंड शर्वरी लीड रोल्स निभाते नजर आ रही हैं, अलॉन्ग विद बॉबी देओल इन द मूवी एज वेल। सो सीबीएफसी ने फिल्म से मल्टीपल स्टैबिंग विजुअल्स सेंसर करवाने के साथ साथ फाउल वर्ड्स भी डिलीट करवाए हैं, साथ ही सारे गाने में सब टाइटल्स भी इंसर्ट करवाया है। सो ऑल इन ऑल द मूवी इज गोना बी ऑफ 2 hours 20 minutes and 45 seconds। सो शिव रवाल डायरेक्टोरियल ये फिल्म 3rd of July को रिलीज होने वाली है। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स बाबू मोशाय। इक्का का ट्रेलर देखा या नहीं भाई? सनी देओल और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ इन दिस इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा इज लुकिंग रियली रियली इंट्रीगिंग। 10th of July को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करना शुरू करेगी, जिसको डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। और इस फिल्म में सनी देओल एंड अक्षय खन्ना के अलावा दिया मिर्जा एंड तिलोत्तमा शोमे जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। SS राजमौली वाराणसी को लेकर काफी अल्टीमेट प्लानिंग्स कर रहे हैं। बैटल सीक्वेंस को लेकर एक प्लान ये आया है बाहर, दैट इसमें 3500 जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल होने वाला है, और इनको फीचर करते हुए इस सीक्वेंस की शूटिंग हैदराबाद में बहुत जल्द होने वाली है। मूवी के लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वी राज, विच इज गोइंग टू बी अ माइथोलॉजिकल एक्शन एपिक। और इसके रिलीज की प्लानिंग अप्रैल 2027 की हो रही है। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef la fiesta la murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
2: ओ मेरी बात सुन,
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था
1: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे
2: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल अब जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज़ जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज़ जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ, और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टेड आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज़ जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफ़र जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाटार जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la sa cabana.
2: ¡Cabana!
1: ¡Murga, murga! ¡La virtual la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¡Hello!
4: ¡Hello!
3: ¿Anjee?
4: विवेक जी,
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तो मजा आ रहा है, यहाँ तू मजे ले रहा फोन करके।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है। कभी रेट्स ऊपर, कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप, तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं, बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

फ्री कॉफी अपग्रेड मिल जाती है, कभी पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मिल जाती है, कभी सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिल जाते हैं, तो कभी रात को फायरवर्क्स एकदम क्लियर नजर आते हैं। तब लगता है कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें इतने पसंद होते हैं, क्योंकि हॉलीडेज का मजा ही तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशियां मिल जाए। और अगर इस 4th of July आपकी लकी लिस्ट में एक और सरप्राइज ऐड हो जाए तो? जी हाँ दोस्तों, इस 4th of July के सेलिब्रेशन में RK ज्वेल ला रहे हैं थोड़ी और एक्साइटमेंट। आपको बस विजिट करना है RK Jewels at 1377 Oak Tree Road, Islington, New Jersey, and you will get to scratch a card and get exciting offers. और मजे की बात तो यह है कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कोई परचेस करने की जरूरत नहीं। You will directly get to scratch a card and avail exciting offers. तो हो सकता है 4th of July आपका लकी डे हो, तो जल्दी से विजिट कीजिए RK Jewels at 1377 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. और मुझे जरूर बताइए कि लकी होने के बाद वो कौन सा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि RK Jewels जा रहे हो तो लकी तो होगे। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, एक अजीब सा मैजिक चल रहा है आजकल। जो गाने हम कैसेट या सीडी पे सुनते थे, वही आज रील्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपने भी नोटिस किया है कि यार, आजकल ना ये जो सारे गाने हैं वो रीडिस्कवर हो रहे हैं, जो हमने कभी लाइव फील किए थे, जैसे कि लग जा गले, आज जाने की जिद ना करो, या फिर ये शाम मस्तानी है। ये सिर्फ पुराने गाने ही नहीं रहे, ये फिर से नए फेवरेट्स बन रहे हैं। और सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है, इनके नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे कि लो फाई वर्जन्स, अनप्लग्ड कवर्स, इंडी रिक्रिएशंस। हर जगह वही पुराने सुर एक नई आवाज में वापस आ रहे हैं। मतलब यार, एक ही गाना एक जनरेशन के लिए याद बन रही है और दूसरी जनरेशन के लिए डिस्कवरी। तो सच बताओ दोस्तों, इससे ज्यादा खूबसूरत ब्रिज क्या हो सकता है, जहां माँ का फेवरेट गाना बेटी के प्लेलिस्ट में मैच हो जाए। और म्यूजिक का तो यही चार्म होता है ना, कि टाइम भले ही चेंज हो पर मेलेडी अपनी जगह बना ही लेती है। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा आपका फेवरेट गाना था जो फिलहाल रीडिस्कवर होता है। टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और मैं बजाती हूँ अपना फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पहाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है।
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके।
4: I love you too. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डेलिबरेट बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते है ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हाँ, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो ये है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्डकोर ट्रेनिंग की थी और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और 6-पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक Our eyes off. वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत मेलेडी। और मजे की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर जी। हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग रिसेप्शन जैसा ही लग रहा था। वैसे तो विशाल शेखर ने इस गाने को एक्स्ट्रा पेप्पी रखा था ताकि हर स्टार एंट्री धमाकेदार ही लगे, और हर स्टार एंट्री के जो कैमियोज थे उसके लिए भी काफी अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे, जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवानगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हो

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virtua, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था, तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अबे मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा हूं?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
3: वाली बातें कर रहा क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट। और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था, और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर। और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तुम हमसे नहीं रिलेशनशिप एक कॉकरोच से करना चाहते हो, हम ये बात समझ गए हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए. दिस इज एग्जैक्टली आई एम नॉट लाइंग टू यू द कॉन्वर्सेशन आई हैड विद माई एक्स टू एक्स बॉयफ्रेंड. तो इस बंदे को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसी बातें कर रही है रोशी, ये तो क्या कह रही है, पी पा के आई है क्या? एंड आई वाज लाइक, हम नहीं पिए हैं, तुम्हारे पीने की प्रॉब्लम की वजह से हमको लग रहा है कि तुम्हारा जो अगला रिलेशनशिप होगा एक कॉकरोच के ही साथ होगा. क्योंकि तुमने कब लास्ट झाड़ू लगाया था अपने घर में हमको बताओ? और घर भी क्या था बेचारे का, एक कमरा था जिसमें उनके हिसाब से जनाब ने झाड़ू बस चार ही तो दिन पहले लगाया था. हम बोले, जो जमीन पर हम इतने दिनों से देख रहे हैं नान का टुकड़ा कोने में पड़ा है, उसका क्या? तो कहने लगा कि हमने नान का टुकड़ा इसीलिए छोड़ा था, हमको लगा कि अगर कोई तुम्हारी तरह परी आए, लेकिन

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे के बोल रहा है।